ये जो प्रश्न तो तुम संज्ञा हो तो खो खो से ताजा ताजा पेश रखो तम लौ ठावला थे जैसे गे कु ची के लौजे मे मे पुटो पे चौ ता सिम लो नौम दो सौ तुम चो नो छु संग छप लो नौम जो नो ता तो यो जो सि हौ तौ ते तु तेन साय लुसे खो खो जो जो कौ प्लंग रौ वि ते तो ट्रों हौ पे ते कौ ते लौ वो तो यु चिली खे या नौ तो हौजे हौ जो जे कु छि लो तु थे कलंग कं तु त ट्रों प्ल मो तो आन दो लेन दो ते यो पो ते मेम ले पी शिया जा जा नों पी यो क्वा या जा जा ई शो तो ई खो यो वो तो ब्लों शे खो खो ब्लों जु यान जो जा यु तु नें लु थाउन दा आ कलंग कं तु कु हा ते ता ट्रों प्ल नो ते मेम ble chu ka lin sia sa sang sho la hai ke sia tie la ko ye mo mo ka lang ko chin ja ka sa tho wo yu tuo mo po ke te kong te long te to trong ho pe no ne mo kho zha zha la ye de pao ke mo to lu a chen du chao la su no che che le wo to yu kho sia yu de chi zhe ge sia la che le wo to yu shang tao shuo ge sia ta pla la hai tia